0: धोनी जैसे जो बड़े वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट हैं, उसको आप जमीनी स्तर पर जल संरक्षण के साथ कैसे देखते हैं?
1: देखिए, गुजरात ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ चेक डैम्स की जो बात अभी हुई, फार्म पॉन्ड्स और रिचार्ज स्ट्रक्चर जो बनाए गए, तो चेक डैम केवल पानी रोकने की संरचना नहीं है, मूलभूत जो बात है वह है बहाव की गति को कम कर देना और भूजल में रिचार्ज करना। देखिए, कुछ पानी तो वाष्पीकरण होता है, लेकिन ज्यादातर पानी, एक 10 फीट तालाब है गहराई का, तो उसमें 1.5 फीट पानी नीचे जाता है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक धारणा है और ये सच्चाई भी है। राष्ट्र के जलाशयों और सिंचाई व्यवस्था तक पहुंचाना रहा है, और इसको बिल्कुल आम भाषा में यदि कहते हैं तो ये है नर्मदा के उपलब्ध पानी और पानी की कमी झेल रहे सौराष्ट्र के बीच में एक जल सेतु का काम किया है, और ये पूरे भारत में और कहीं नहीं आपको देखने को मिलता है। तो कोई योजना राज्य से इतनी ज्यादा प्रेरक हो जाए, ये सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है। और गुजरात का अनुभव ये बताता है कि वाटर ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह जो आप भेजते हैं, तो उसके साथ साथ जल संरक्षण, जल संवर्धन और उसके वास्तविक उपयोग की बात होती है। पानी इकट्ठा कर लेना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पानी आप इकट्ठा कर ले रहे हैं, रन ऑफ वाटर को आप रोक ले रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे हो? आने वाला समय जो भविष्य जो है वो यही है कि वाटर बजटिंग का अब जमाना आ गया है, कि कैसे आप उन पानी की मात्रा को ज्यादा ज्यादा बचा कर रखते हैं और कितना अधिकतम उपयोग करते हैं। ये गुजरात की ओर से दिया गया, पूरे राष्ट्र को एक दिया गया बहुत बड़ा उपहार।
2: बिल्कुल, आई कैन सप्लीमेंट दैट, आंकड़े बताएंगे तो 115 डैम्स में पानी भरा गया था, और ऑलमोस्ट 1,84,000 चेक डैम्स और 3,27,000 फार्म पॉन्ड्स को रिजुविनेट किया गया था। इतना बहुत बड़ा संख्या है, एंड जैसे आपने बताया ये जो फार्म पॉन्ड्स और चेक डैम से जल स्तर भी बढ़ता है, वो सबके लिए यूजफुल भी होता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे गुजरात की जब भूजल की हम बात कर रहे हैं, तो भूजल का जो बहुत प्रयोग होता था, पानी की कमी थी, जल संकट था, लेकिन जब सोच बदली और इसका दोहन कम किया गया, तो गुजरात विशेष रूप से जो राज्य के उत्तरी क्षेत्र में भूजल स्तर का जो स्तर है उसे ऊपर उठाने में एक योजना शुरू की गई, सुजलाम सुफलाम। तो ये किस तरह से कारगर सिद्ध हुई?
2: सुजलाम सुफलाम अगेन, दैट इज अगेन अ वेरी इनोवेटिव स्कीम जो वाटर टेबल बढ़ाने का कार्यक्रम किया था, एंड उसमें काफी हद तक पर्टिकुलरली इन नॉर्थर्न गुजरात में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स तैयार करके लोगों जन भागीदारी से वाटर टेबल बढ़ाने का कार्यक्रम किया, वो भी सक्सेसफुल भी रहा था।
0: जी हाँ, तो अगर अमरिंदर जी आपसे जानना चाहूँ, जो सुजलाम सुफलाम है और चेक डैम्स की हमने खैर बात ही की है, तो ऐसे प्रयासों से गाँवों में क्या वास्तविक बदलाव पैदा होता है, और कई ऐसी कहानी या उदाहरण आपको याद हो जो आप इस उसको बदलाव का उदाहरण मानते हैं?
1: पूरा गुजरात ही बदलाव का उदाहरण है, लेकिन आप भौगोलिक रचना देखें, संरचना कहिए, तो उत्तरी गुजरात का जो हिस्सा है वो भूजल के मामले में कमजोर रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दोहन हुआ उसका पहले से ही, क्योंकि उसके जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां भी पानी की समस्या रही है। अब देखिए, सुजलाम सुफलाम जो योजना है, ये जल प्रबंधन को स्थानीय गांव की सीमा से बाहर निकालकर, एक तो गांव का पानी हो गया, लेकिन उस सीमा से बाहर निकालकर रीजनल लेवल पे क्षेत्रीय स्तर पर देखने की एक कोशिश की गई है, और ये कोशिश ही नहीं, एक सफल कोशिश है। उपलब्ध जल को, उपलब्ध पानी की वाले इलाके को वहां तक पानी पहुंचाना, चाहे वो पाइपलाइन से हो या नहर से हो या जलाशय से हो, और रिचार्ज जैसी व्यवस्थाएं सुजलाम सुफलाम में है। नाम से ही लगता है कि हाँ, हरितिमा है, हरियाली है, तो ये सफल रही है योजना। और इसका मूल संदेश जो रहा है, सफल संदेश है, वो ये कि जहाँ पानी उपलब्ध है उसे वहां तक पहुंचाया जाए जहाँ उसकी जरूरत अधिक है। बहुत बड़ी बात है, संवेदनशीलता है। देखिए, पानी को लेकर जब तक आपके अंदर में हार्दिक श्रद्धा नहीं हो, अंदर संवेदनशीलता नहीं हो, तो ये सरकार के लेवल पे ही चीजें नहीं होती हैं। सरकार ने एक अच्छा प्रयोग किया और लोगों को बताने में, लोगों को जताने में सरकार सफल रही है कि पानी की जरूरत जो है उसके आखिरी प्रयोगकर्ता, उपयोगकर्ता आप हैं। आम जनता ने इस बात से, क्योंकि पानी की परंपरा रही, आप उदाहरण देखें तो पानी की परंपरा रही है, तो आम जनता तक उनके ज्ञान को, लोक ज्ञान को फिर से पुनर्जीवित करना एक बहुत बड़ी बात है। पानी का दुरुपयोग वहां गुजरात में मुझे देखने को कहीं नहीं मिला, राज्य के कम से कम 17 जिलों में मैंने देखा है, उस तरह की स्थिति नहीं है कि पानी का दुरुपयोग हो रहा है। तो खेती में सबसे ज्यादा पानी का उपयोग खेती में है, वहां पर बचाकर पानी को रखना ज्यादा

0: ज्यादा उपयोग करना, ये सुजलाम सुफलाम योजना की एक बहुत बड़ी सफलता है। और इस तरह से जो योजना सफल रही है, इसमें सरकार और आम जनता का सामंजस्य रहा है। और किसी एक इलाके की बात आप क्या करेंगे, उस पूरे इलाके में गांव के गांव आज हरियाली में हरियाली का आनंद ले रहे हैं।
1: बिल्कुल, पारंपरिक आपने जैसे जल संरक्षण की बात की, तकनीक होती थी हमारे देश में, इतिहास रहा है, जैसे टांका है, बावड़ी है, कुंड है, कुएं है, तालाब, लेकिन बीच में ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। और अगर देखें तो कई क्षेत्रों में इसके आपने कहा पुनर्जीवित किया जा रहा है, फिर से इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। और विशेष रूप से जब से प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में ऐसे उपायों का, ऐसे जो एग्जाम्पल्स हुए हैं उनका जिक्र किया है, तो इन प्रयासों में और तेजी आई है।
0: बिल्कुल, और गुजरात ही नहीं, गुजरात के लोगों को प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि देवास में क्या हो रहा है, किसी और इलाके में क्या हो रहा है, वहाँ पर भी एक आम जनता की जो जिम्मेवारी बनी और जिस तरीके से उन्होंने उसका तरीके से निर्वाह किया, तो पूरे मुल्क को, पूरे देश को वो बता रहे हैं कि पानी आपका अपना संसाधन है, इसे बचाइए, इसे तरीके से खर्च कीजिए और इसे बढ़ाइए।
1: जी अशोक जी, आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि जल संरक्षण में कई मुख्य बिंदु हैं और उनमें से एक है जन भागीदारी, तो ऐसे ही दिशा में गुजरात में भी कदम उठाए गए। जैसे हम वास्मो और पानी समितियां का बात की बात करते हैं, तो उनके माध्यम से जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को महत्व दिया गया, तो इस मॉडल में ऐसा क्या रहा जिसने पानी की व्यवस्था से जो गांव है और जो समुदाय है उनकी भूमिका को इतना मजबूत कर दिया?
2: देखिए, ये एक बुनियादी ट्रांसफॉर्मेशन लाया उन्होंने। हम क्या करते थे, सब जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ देते थे, ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं, हमारा काम उपयोग करना है, दैट इज दी एटीट्यूड। बट यहाँ पे हैबिटेशन वॉज ड्रिंकिंग वाटर कमिटीज या जो पानी पंचायत और वाटर यूजर्स का एसोसिएशन बनाया था, पर उसको वाटर के मैनेजमेंट में हिस्सेदार बनाया था मोदी जी ने उस समय SCM, तो लोगों को भी लगा कि देखो काम हो रहा है, हमारे भी एक हिस्सा है, हमको भी इन्वॉल्व करना है, एंड उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया। और ऐसा नहीं कि खाली पेपर में उसको एक जगह पे बिठा दे, तुम यहाँ बैठ को तुम इसका जो भी है डिसिग्नेशन हो, काम हम करते रहेंगे, डिसीजन हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं था। उन्होंने जिसको पद पर बिठाया था उसको डिसीजन लेने का भी पावर दिया था और इम्प्लीमेंटेशन का भी पावर दिया गया था। इसमें क्या होता कि एक ओनरशिप आ गया, लोगों को जो भागीदारी से वो आगे आकर पानी की बचत का काम किया, उनको भी लगा कि ये हमारे लिए कर रहे हैं और हमको इसमें इन्वॉल्व होके एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे काम करना, उसने किया गया। तो ये इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो मोदी जी ने किया बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ कि मोदी जी ने पानी को अनेक रूप होता है, मतलब पानी बहते पानी नदी में जाते हैं, वो स्टैगनेंट वाटर तो लेक में होते हैं, कुएं में होते हैं, पॉन्ड्स में होते हैं, फिर रेन वाटर है, वो बारिश गिरते रहते वो रेन वाटर होते हैं, आइस होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, और वेस्ट वाटर भी होते थे, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि बहुत सारा पानी जो इंडस्ट्रियल में वेस्ट में जाता था और उसको ट्रीट करके हम दूसरे तरफ प्रयोग कर सकते थे, तो ये एक नया सोच था। सर्कुलर इकोनॉमी, उन्होंने वहां पे भी ये रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर का भी यूज किया था, तो जिम्मेदारी इंडस्ट्रीज पर फिक्स किया गया कि आपको जो पानी यूज करते हैं उसका रिड्यूस करो, रिड्यूस नहीं कर सकते उसको कम से कम ट्रीट करके रीयूज करो। तो ये ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन कम करने का और सरफेस वाटर एक्सप्लॉयटेशन करने का जो प्रयोग उन्होंने किया, दैट इज वेरी वेरी सक्सेसफुल।
1: रीयूज ऑफ वाटर के ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जब मैं फिलहाल समितियों की जन भागीदारी की बात कर रही हूँ, तो जो पानी समितियां, जैसे गांव जल और स्वच्छता समिति की जो अवधारणा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं अमरेंद्र जी? और अगर हम देखें तो क्या पानी की व्यवस्था तभी टिकाऊ बनती है जब गांव खुद उसके संचालन और रखरखाव की जो जिम्मेदारी है स्वयं उठाए?
0: देखिए, गोंड लोगों का जब शासन था मध्य प्रदेश में, तब से तालाब की और पानी की एक परंपरा रही है जो इतिहास मैंने पढ़ा है। गुजरात में जो प्रयोग हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसे हम एक वाक्य में कहें तो जल सुधार कह सकते हैं। पानी को सरकार और आम जनता की साझेदारी की जो संस्कृति विकसित हुई है वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। ये जो जल सुधार का जो महत्वपूर्ण प्रयोग रहा है, उसमें इस बात का जोर रहा है कि ग्रामीण पेयजल केवल सरकारी इंजीनियरिंग का विषय नहीं रहे, बेयरफुट प्लम्बर पैदा हुए, बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अमूमन आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैंने देखा है उन इलाकों में, कई गुजरात के कई रिमोट एरिया में देखा कि वहाँ बेयरफुट प्लम्बर हैं, जल का उनको ज्ञान भी है, वो लोक ज्ञानी भी हैं, और गांव को स्वयं अपनी जल व्यवस्था करनी है जिम्मेवारी सौंपी गई, उत्तरदायित्व, सारा काम नौकरशाही कर दे और सरकार कर दे नहीं। और जब तक उत्तरदायित्व की भावना नहीं आएगी, स्वामित्व की भावना नहीं आएगी, तब तक आप जल जैसे

0: संसाधनों को एक व्यवस्था में लाकर उसे अनुशासित नहीं कर सकते हैं। इस जल व्यवस्था में जो कम्युनिटी ओनरशिप जिसकी मैंने बात की है और स्थानीय जन भागीदारी और जवाबदेही, यह एक अवधारणा मजबूत हुई है। गुजरात एक बहुत बड़ा प्रेरक रहा है इस मामले में और यही सोच बाद में राष्ट्रीय स्तर, जो हमारे डिस्कशन की शुरुआत जो हुई और आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आया, यह वही योजना जो बाद में जल जीवन मिशन में दिखाई देती है जहाँ पानी समिति।
1: റേഡിയോ സാന്ത്വനം 90.4 FM കൊല്ലത്തിന്റെ സ്വന്തം കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ, നാടിന്റെ ശബ്ദം, ഹൃദയത്തിന്റെ താളം.